प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखोजी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भंग वाले हो जिन्हों ते सतगुरु गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जिया ने अपार बख्शिश कृपा मेहराम कीती है। जिथे अमृत वेले दे सतगुरु जिया ने जागने बख्शिश किते हैं उथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कनेरी नदर करके सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन और श्री अमृतसर साहब के इशनान बख्शिश किते। अमृत वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जिया ने प्रकाशमान होके समुची मानवता दे कल्याण हित जो सानू मुख वाक हुक्मनामे की बख्शिश की है इस पावन मुख वाक हुक्मनामे की विचार करने वास्ते अपन जुड़ बैठे हाँ। अज का पावन मुख वाक गुजरी राग अंदर भगत रविदास महाराज जी का उच्चारण किया हुआ पावन शब्द जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र अंग 525 उत्ते सवाहेमान है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्मनामे दे रूप में अपन बख्शिश किया है। इस पावन शब्द विच उस हरि गोविंद अकाल पुरख रब परमेश्वर की पूजा किवें हो सकती है हजूर ने सानू दसना किया है। और उस वक्त जिन्हां तरीकों नाल जिन्हां चीजां नाल पूजा हुंदी सी उन्हां दा भी जिक्र किया है। अज भी इन्हां चीजां नाल इन्हां पदार्थां नाल पूजा हुंदी है। पूजा की है, पूजा किसनी करनी है और पूजा किवें करनी है, तीन चीजें इस शब्द विच्चों आपां समझणियां ने कि पूजा की है, पूजा किसकी करनी है ते पूजा किवें करनी है। क्योंकि साध संगत यह चीज समझनी जरूरी है। कोई भी काम करन लगे पता होना चाहिए क्यों करना है, किवें करना है ते करन दा फायदा की होएगा। जदों मकसद पता लग जाए फिर मंजिल जरूर आउंदी है। जदों मकसद ना पता होवे ते बंदे दी मंजिल भी खुंझ जांदी है। जिन्ने भी रस्ते विच लोग ड्राइव कर रहे ने, गड्डियां चल रही ने, हर एक बंदा अपनी मंजिल वल जा रहा है। और दुनियावी वो मंजिल पहला लोग रस्ता पुछदे ने किहड़े रस्ते तो जाना है, किहड़ा रस्ता ठीक रहेगा, किस रस्ते उत्ते ट्रैफिक है, किहड़ा रस्ता सौखा लंघ जाएगा। और साध संगत फिर भी उस रस्ता पुछण वाले नूं राह ते ओह पुछ लैंदा है पर उहदी सुरती विच उहनूं मंजिल चेते होने चाहीदी। कोई भी रस्ता, कोई भी मार्ग मंजिल उत्ते उदों पहुंचाउंदा है जदों जाण वाले नूं मंजिल चेते होवे कि पहुंचना कित्थे है। आओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश कर रहे हैं पावन शब्द दी विचार नाल जुड़िए। एक बार सारी संगत आपो अपनी हाजरी लवाओ, जिन्ने शरीर गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो जां दूर दरेडे देश विदेश विच इंटरनेट चैनल के माध्यम राही जुड़े हो आपो अपनी सुरती विरती एकागर करके लवाओ हाजरी। दोवें हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों का ध्यान करके एक बार आखो जी सतनाम श्री

बहु न पीजे संयम स्वामी बोले मीठे बैण। महाराज कद पूजा होनी कहते को चीज न प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। मन विच वाहगुरु जपना शुरू कर तेनू चैन आ जाएगा, होर किसे तरीके नाल नहीं होना। प्रभु जी

कैलगरीज 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करते ने। इना दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इना दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा, यूनिट नंबर 1130, 4818 वेस्ट विंड ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6666 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-581-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stanford

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4060 या विजिट करो www.punjabiradio.ca।

अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई अब अपने प्रीतम स्यों बन आई

अब अपने प्रीतम सों बन आई, अब अपने प्रीतम सों बन आई। राजा राम रमत सुख पायो, राजा राम रमत सुख पायो।

होरी ना विछोड़, ना विछोड़ हिक पोरी ना विछोड़, ना विछोड़ हिक पोरी ना।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद।

0: से साईं कनो दत्त, साईं कनो दत्त।
1: हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिकै बिक खाई, माया मोह

0: तेरी कुदरत सचे पाछा नानक सच तैन सच जो मत मैं सो कच न कच महला पहला
1: वड़ी वड़ियाई जा वड़ा ना हो वड़ी वड़ियाई जा सच ने आओ वड़ी वड़ियाई जा निश्चल थाओ वड़ी वड़ियाई जाने आला वड़ी वड़ियाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा आपे आप नानक कार न कथनी जाए कीता।

0: जन्म कब आया, जन्म कब आया।
1: थोड़ी अपने भोग भोग आपस में पौ सदाया, वड्डा हुआ दुनीदार कल संगत घर चलाया। आगे करनी कीर्त बाजिए, पहले का घर समझाया, था ना हो भी पौधे सुनिया क्या रवाया।

0: और हमें चकड़ा चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तोलव्या बहु भेख किया ते ही दुख दिया शाहवे दिया अपना किया आन ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे ऐनस कहरे मौन विगूता क्यों जागे गुरबिन सूता पग उपे ताना अपना किया कमान हल मल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवा बिन नावे किछ थाए न पाई रह बेपाणी मड़ी मसाणी अंत न जाने फिर पछताणी सत गुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंधे सहते नह केव हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाम दे दर सोहन कीरत काम दे नानक धर्मा बाहरे दर ढोल लैनी ताम दे एक मोल न

0: सच काल कूड़ वर्त्या काल काल मैं काल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवैदा जे एक होए तो गवै रुति होर तु होए नानक पाहे बारा कोरे नंग न सोए ऐ बिच कुंभ चढ़ाइया सरम पातन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए ना कोए महला पहला
1: लापा दो राजा मेहता कूड़ हो आशिक।

आमदार भगत उत्तर आयो। बड भागी उन मानया रेद शब्द बसाया मन मानक संतोखया गुर नाम दड़ाया आगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसाया गुर अर्जुन घर गुर रामदास अनपौ ठहराया जनक राज बरताया सतयुग आलीना।

0: प्राण बाची है, वेद ब्रह्मा मुख गावे, अजय चवर सिर टुले, नाम अमृत मुख लिया, गुर अर्जुन सिर सतर, आप परमेश्वर दियो, मेरे नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पह गयो, हर वंश जगत जस संचरियो, सो कमन कहे श्री गुर मोयो।
1: देवपुरी मैं गयो, आप परमेश्वर पायो, हर सिंहासन दियो, श्री गुर ने बैठायो, रहस कियो सुर देव, तोह जस जय जय जंप, असुर गे ते भाग, पापिन पीतर कंप, काटे सो पाप तिन नरों के, गुर्राम दा जिन पायो, शतर सिंहासन प्रथमी, गुर अर्जन का दे आयो।
2: निर्मल नाम सुधा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिने आगरे, गहर गंभीर थायत बड़ सुपर सदा सबिद रत नागरे, संत मराल करे कंतूहल।

प्रभु अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम मंगल साज पाया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम मन प्रीत लागे वड़े भागे कब मिलिए पूरन पते सहजे समाइए गोविंद पाइए देहो सहिए मोह मते दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगते पाया बिनवंत नानक करहो कृपा लहो मोह लड़ लाया पाया समारा हर रतन विसाराम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाराम मिले संत प्यारे दया तारे कथे अकथ विचारो एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारो

प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सपागी राम प्रभ कर आए अराम गोर चरणी लागी राम गोर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तोरी हर मिले कंत विछुन्या आनंद आनंद न वजहे वाजे

संत संग लेव लागी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजया जाया।

0: नानक मेर शरीर का एक रथ वाह जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझेता है सत जुग रथ संतोख का कर्म गे रथवाओ त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ तो अपरतपे का सत अगे रथवाओ काल जुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ महला पहला
1: साम कहै सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहै सब को सच समावै रिग कहै रहया भरपूर राम नाम देवा मैं सुर नए नए प्रच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मैं वेद अथक बन हुआ नाव खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्चार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखल तर पाए पौड़ सतगुर बिटो।

0: पहला कौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाई धोती टिकाते जब माली तान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगाए तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरा नाद ओना पे आवे ओई सार कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मथा टिका तेड़ धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रमाण मलेश तान ले पुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जान देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एह अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जुठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई है।

0: कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवे रसोए नानक सूतक एवना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़।

0: जे लेखे वरते सोए महला दूजा।
1: सलाम जवाब दो वै करे मंडो कुथा जाए, नानक दो वै कूड़िया थाए ना काई पाए, और जित सेवे है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाई है अपना सकाल बुरी।

0: नहीं दात आपस ते जो पाये नानक साकरमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा।
1: एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम न जाए नानक सेवक काढ़िए जिसे ती खसम समाए

0: रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर फला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर मान महाता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दासन दास कुदिया गै बिन वता
1: ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कृ चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह ना सकत किह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गण जै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत भन तृण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत काल समुद्र पय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बस है संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जानो पयो तिह समसर सोई तारन गगन नवखंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथरा कश भेद नहीं गुर अर्जुन पर तख हर मेल लहो दयाल टह पय द्वारिया रख ले बहु दीन दयाल प्रमत बहु हारिया भगत वशल तेरा बिरद हर पतत उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिनो मोहे सारिया कर गहले हो दयाल सागर संसारिया लिख कतहे ना छूटिया खिन खिन भूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तोद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह हो सर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे साहिब जी बिलावल महला पंजवा छ
शांत एक ओ अंकार सतगुरु प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनया मन उपजया चाया राम मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड़े भागे कब मिलिए पूरन पते सहज समाइए गोविंद पाइए देहो सभिए मोह मत दिन रैन ठाडी कराओ सेवा प्रभ कवन जुगती पाया बिनवंत नानक करहो कृपा लहो मोहे लड़ लाया भया समाहरा

परम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मिली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सभागी राम प्रभ कर आए अड़ा गोर चरणी लागी राम गोर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तूरी हार मिले कंत विछुनिया आनंद आनंद न वजहे वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे आनंद आनंद न वजहे वाजे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: वाहिगुरु साहिब जी।

जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परै की राखो शर्मा।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

महाराज ने पज हर मना पर ना जम की फांस। एक निमक जितना समा तू नरलेप हो वाशना तू हरी परमात्मा दा स्मरण कर तेरे गल विच जमा दी फाई नहीं पैगी। देखो सतगुरां ने यह जिहड़ा शरीर सानू परमात्मा ने बख्शिश कीता है इस कोई शक नहीं इस मानवी शरीर पंजां तत्तां दी जड़त परमात्मा ने कीती है ते इन्हां पंजां तत्तां दी जड़त विच इस शरीर विच छठम आप अदृष्ट होके बैठा होया है करता आप इस विच वरत रहा है पर जिथे पंज तत्त ने उथे परमेश्वर ने सानू पंज ज्ञान इंद्रिय दिते है पंजां तत्तां दे पंज गुण ने थोड़ी जी व्याख्या के बिखियन सिंह काहे रची पंजां तत्तां दे पंज गुण ने जिन्हों साडे विद्वान पुरश कहिंदे आ शब्द स्पर्श रस रूप और गंध ए पंज तत्त ने ए पंज तत्तां दे गुण ने। हुण इन्हां पंजां गुणां नूं ग्रहण करन वाले साडे शरीर दे जिहड़े इंद्रे ने उन्हां इंद्रियां नूं साडे विद्वान पुरशां ने नाम दिता है ज्ञान इंद्रे। शब्द इहदा ज्ञान इंद्रा कन्न ने स्पर्श दा ज्ञान इंद्रा तुचा है रस दा ज्ञान इंद्रा साडी जबान है जेवा है रूप दा ज्ञान इंद्रा जेड़ा है असी उह देखने आ साडियां अखां ने शब्द दा ज्ञान इंद्रा मर्ज कीती साडे कन्न ने गंध दा ज्ञान इंद्रा जेड़ा उह साडा नक है। ए पंजां दे राहीं सानू इन्हां पंजां तत्तां दे पंज गुणां दा ज्ञान हासिल हुंदा है पर ए मनुख दे अंदर दी बिरती है कि उस चीज नूं किस ढंग दे नाल इन्ने स्वीकार करना है। अखां रूप देखदियां ने पर जे अखां दी सही वरतों कीती जाए ते ए जहर दी थां अमृत भी देखदियां ने। जदों असीं बाणी पढ़ने आ अखां नाल शब्द देखने आ अखां नाल गुरमुख प्यारी किसे रूह दे दर्शन करने आ कन्नां नाल अज्ञान भी सुनिया जांदा है ते कन्नां नाल ज्ञान भी अंदर जांदा है अखां नाल जहर भी जांदा है अखां नाल अंदर अमृत भी जांदा है गंध भी जांदी है नासका राहीं ते दुर्गंध भी जांदी है रसना बेरसी भी है ते रस विच भी है। सतगुरां ने इस विषय का जिक्र करदिआं एक उदाहरण दित्ती है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत रविदास साहिब जी का वचन है मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। आपां विचार इस तुक दी कर रहे हैं बिखियन सिंह का के रचियो निमख ना को है उदास। हुण ये पांच शब्द ने मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध जामह ताकि केतक आस। देखो मृग है हरन असी कहने सिर्फ उन्हूं इको रस है शब्द दा घंटे खेड़े दी आवाज नाल ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚੇਵਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕੰਨ ਦਾ ਰਸ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੈ ਗੰਧ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਮੇਟਦਾ ਤੇ ਭਵਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲ ਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਦੇ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਹੈ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੰਗਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंप

योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख दे मालिक तन तन आद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सर्वत्र माई भाई बहुत वड्डे भागां वाले हो जो काल पुरख वाहिगुरु द्वारा बख्शिश किते हुए मानस जन्म दुर्लभ दे दिया अमोलक घड़िया विश कीमती स्वास श्री गुरु ग्रंथ साहेब महाराज जी दी गोद अंदर जुड़ बैठ सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। आओ कुछ क समय वास्ते गुरमत विचारां नाल अपनी सांझ बनाइए उस महान शहीद दी महान कुर्बानी ते महान जीवन नूं याद करिए और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कलगीधर दशमेश पिता सतगुर जी दे चरणा विच अरदास करिए पातशाह सानू भी एहो जिहे शहीद प्यारे गुरसिखां दी चरण धूल बख्शिश करो तां जो असीं भी सिखी सिदक भरोसे की दात प्राप्त करके ये जीवन जन्म सफल कर सकीए। एक बार करो कृपालता दोवे हथ जोड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर मनुख की संसार विच इच्छा है कि मैं दुनियावी तौर ते सफल होवां कामयाब होवां और सब तो पहली इच्छा मनुखी मन की यह रहिंदी है कि मेरे कोल वध तो वध पैसा इकट्ठा हो। क्योंकि संसारी तौर ते मनुख के दृष्टिकोण विच आउंदा है कि जिहदे कोल पैसा है वह दुनिया में सब कुछ लै सकदा है। हाँ इहदे विच शक नहीं कि जिहदे कोल पैसा ज्यादा है वह दुनिया में बहुत कुछ लै सकदा है खरीद सकदा है पर साध संगत सब कुछ नहीं लै सकदा। यह चीज याद रखने वाली है पैसे नाल दुनिया में बहुत कुछ खरीदया जा सकदा है पर पैसे नाल सब कुछ खरीदया नहीं जा सकदा। पैसे नाल दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकदा है पैसे नाल शौहरत मिलती है पैसे नाल जमीन मिलती है पैसे नाल बंदे खरीदे जाते ने पैसे नाल राज खरीदया जाता है पर साध संगत पैसे नाल सब कुछ खरीदया नहीं जाता। जे पैसे नाल सब कुछ मिलता हो अरबपति लोग भी सुसाइड करते हैं आत्महत्या करते हैं यदा मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने नहीं मिले इट मीनस कोई ना कोई घाट रह गई पैसा होने के बावजूद भी सब कुछ प्राप्त नहीं हो क्योंकि पैसे वे सब कुछ नहीं। हाँ पहली इच्छा जरूर है कि जिहदे कोल पैसा है वह बड़ा कुछ लै सकदा है पैसे की खातर बंदा अपनी जान खतरे विच पा लैंदा पैसे की खातर आपां सारे लोग मेहनत करते पैसे की खातर लोग 18-18 घंटे जाग के कम करते ने साध संगत किरत करनी मेहनत करनी माड़ी गल नहीं पर यह गल याद रखने वाली है पैसा सब कुछ नहीं पैसे तो उत्ते भी कुछ है। साध संगत चोर दे मन विच आउंदा है वह पैसे की खातर अपनी जान खतरे च पा ले अद्धी रात नूं चोरी करन जांदा है उहदे मन विच इस गल का ख्याल नहीं आउंदा वे घर वाले जाग जाणगे मैं पकड़ा जावांगा कोई लोक उठ के मैनूं मारनगे जिहदे घर विच चोरी लाउण जा रहा है हो सकदा उहदे घर विच हथियार होवे वह गोली मार दे हो सकदा पिंड वाले जाग जाण मैनूं पकड़ के कुट के मार देण चोर मौत तो उस वक्त डरदा नहीं चोर उस वक्त अपनी जान खतरे विच पा लैंदा है क्योंकि उहनूं इक्को ही मकसद है पैसा प्राप्त होवे पैसा सब कुछ है पर साध संगत एक दिन बंदे नूं जिंदगी विच समझ आउंदा है कि पैसा सब कुछ नहीं पैसे तो उत्ते भी कुछ है पैसे तो उपर की है तुहाडी जिंदगी दा तजर्बा रहना है पैसे तो उपर है संसार विच जिंदगी विच पैसे तो उपर है जान ते साध संगत जदों बंदे दी जान खतरे विच आ जाए
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਸਾ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨਾ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਜਹਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ ਉਹਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ

0: अकाल पुरख का दिता धर्म अमुल है। माफ करो धर्म इन थोड़ी कहते गिनती बहुत वज है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो लोगों नू धर्म की व्याख्या नहीं अजे समझ। धर्म बंदियां दी गिनती बधाउणा नहीं, धर्म किसे धर्म दे चिन्ह पहनना धर्म नहीं, धर्म किसे धर्म दा पहरावा पहनना बंदा धर्मी नहीं। साध संगत पहरावा तो कोई भी पहन सकदा, वेखण नू ते दाणा प्रकाश कृपान उपर जी भाई कोई होर बंदा भी सिख लग सकदा। साध संगत किसे धर्म दा पहरावा धर्म नहीं, कोई पहरावा तुहानू परमात्मा तक नहीं लेके जा सकदा। हो सकदा है अजे बंदे ने धर्म दा पहरावा ना पहने होवे, ओ धर्म कमा रहा होवे, ते हो सकदा है कोई पखंडियां वांग दास वांग धर्म दा पहरावा पहने होवे ते ओदे कोल अजे धर्म ना। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो, पातशाह ने धर्म की व्याख्या की है। हजूर कहिंदे ने धर्म दा चिन्ह पहनना धर्म नहीं, गल विच कोई जंजू पाउणा कृपान पानी स्लीव पा लेना धर्म नहीं। धर्म है साध संगत एक अकाल पुरख का नाम जपना, ते दूजा पातशाह ने कहा 24 घंटे जो तू कम करना तेरे कम्मां विच डिफेक्ट बेईमानी धोखा चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, तेरे कम निर्मल होण तू धर्मी, तेरे कर्मां विच बेईमानी ना हो। जे तू बेईमानी कर रहे फिर किसे दा पहनिया होया पहरावा तेन परमात्मा तक नहीं लगे जा सकता। सुखमनी साहब का पाठ पढ़ो, पातशाह ने धर्म की व्याख्या की। उथे हजूर कहिंदे सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, ये थोड़ी वे कोई सलीब तुहानू दिंदा लो जी क्रिश्चन बन गए, जंजू पहन लिया हिंदू बन गए, कृपान वाले सिख बन गए, नहीं। माफ करे साध संगत पहरावा परमात्मा तक नहीं लेके जाता, पहरावा चाहिए। पहरावे का मुल उदो पै जाता है जदों साध संगत विच धर्म हो गए।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
0: बाजारां तों अखरोट खरीद के लियांदे बाजार ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਖਰੋਟ ਤੋਲੇ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਬਾਹਰਲਾ ਫੋਕਟ ਸੁੱਟਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਲੋ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਗਿਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਫੋਕਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਫੋਕਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਕਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫੋਕਟ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਅਖਰੋਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਨਾਨਾ ਖਰੀਦਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਛਿੱਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਲ ਤੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾੜ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾੜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਮਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਖਰੀਦੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੰਨਾ ਵੱਢ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਪੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹੀ।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्तिविधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 1098 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

परम सन्मान योग शतर चवर तखत दे मालक समुची मानवता दे सांझे रहबर खलकत नूं हक सच दा रब्बी पैगाम बख्शिश करन वाले संसार दे सर्ब सांझे पैगंबर दीन अते दुनिया दे मालक हलत पलत दे रखवाले सर्ब घटा प्रतपालक ऐसे दीन दयाल सच्चे पातशाह गुरगद्दी पुर सुभायमान जुगो जुग अटल धन गुरुदेव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र हाजूरी दा आनंद माणदियां आप सरबत माई भाई गुरु खालसा जी अमृत वेले तों सचखंड श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब विखे सतगुरु सच्चे पातशाह जी वल्लों बख्शिश कीते हुए पावन मुखवाक सरवण कीते अमृत वेले तो हाजरियां भरदियां सेवा ते सिमरन दे नाल जुड़दियां गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान स्थान विखे सवेर वेले दे सजे हुए दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो आप वड्डे भागां वाले हो अते देशां विदेशां दे विच बैठी सिख संगत जो लाइव टैलीकास्ट दे राहीं गुरु की बाणी दे नाल गुरदर्शन नाल जुड़ी हुई है इह वड्डे भागां दा सदका सतसंगी जनों सतगुरु जी दी पावन बाणी दा फरमान है सब दू वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुरचरणी सिख पड़तिया सब तो वड्डे भाग उन्हां गुरसिखां दे हन जो गुरु के चरणां दे विच अपना आपा भाव त्याग के समर्पित होके गुरु के चरणां दी हाजरी भरदे ने। भाई नंद लाल जी ने दो बड़े प्यारे बचन लिखे ने, कहन लगे ऐ बंदे दुनिया दे विच आया है ता एक ही इच्छा मन दे अंदर रख, वो है खुदा दी बंदगी गुरु की सेवा। ये गुरु की सेवा दी इच्छा, प्रभु दी बंदगी दी इच्छा, ये श्रेष्ठ इच्छा है। जिन्हां दी जीवन विच रहिंदियां ये इच्छा पूर्ण हो जांदी वो वड्डे भागां वाले ने, ते जिन्हां नूं प्रभु दी याद गुरु की संगत नहीं मिले ये नीले रंग दा असमान ते भूरे रंग दी धरती तो भला उन्हां नूं की प्राप्त है। उन्हां बड़े प्यारे बचन लिखे, हवाए बंदगी आवुरद दर वजूद मरा, ऐ कलगी धर दशमेश पिता तुहाडे चरणां दी बंदगी करन दी जो इच्छा सी मैनू इस मनुखा जामे दे विच लैके आ गई, नहीं तां इस संसार दे विच आउण दा होर मेरा कोई लक्ष्य नहीं सी, कोई मनोरथ नहीं सी। इको मनोरथ है गुरु की सेवा, परमेश्वर दा नाम। हवाए बंदगी आवुरद दर वजूद मरा, वगर नह जौ के चुनी आमदन नबूद मरा, खुश अस्त उम्र के दर बाजाद बेगुजरत, वरना चे हासिल अस्त अजी गुंबदे कबूद मरा। वरना इस जीवन दे विच की हासिल है जे प्रभु परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़न दे लई समा ही नहीं कढ़िया। भगत कबीर जी फरमांदे, कबीर एक करी आदि करी आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। सो वड्डे भाग सतसंगी जनों, आप जी उस पावन पवित्र अस्थान दियां हाजरियां भर रहे हो जिस बाबत सतगुरु जी का अपना बचन है, डिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया, बदोह पुरख बिधाते तां तू सोहया, वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हां नानक कसमल जाहे नाय रामदास सर। सो वड्डे भाग सतसंगी जनों, आओ हजूर दी अमृतमई पावन गुरबाणी दी सांझ पाउण तों पहला
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਵਨ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਲਵਾਈਏ ਚਰਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

गुरु प्यार वाले वडभागी सतसंगी जनों, ये जो अमृतमई पावन बाणी दी दात हजूर त्रुट के अज दे दीवान विच बख्शिश कर रहे ने, ये अमृतमई पावन बाणी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रतख हरी शांति दे सोमे बाणी के बोहत शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे ने। पावन पवित्र बाणी राग बिलावल दे अंदर शंता दे रूप विच उचारण कीती हुई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 845 ते शोभा पा रही है। पावन पवित्र बचन जो आप जी ने सरवण कीते पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां नूं नाना गुरुदेव गुरु अमरदास जी महाराज जी ने यह असीस दित्ती, जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का प्रकाश होया तां गुरु अमरदास जी महाराज अपने दोतरे नूं असीस देण दे लई प्यार देण दे लई पहुंचे, अपनी गोद दे विच लिया ते अपनी बेटी सत्कारयोग माता भानी जी नूं कहन लगे बेटी, तुहाडी कुख तों जो पुत्र पैदा होया है ये बाणी दा बोहित है, बाणी दा जहाज है, भारी सतगुरु जगत विच प्रगट होएगा। इतिहास दे बचन हन, गुरु अमरदास महाराज जी ने फरमाया बाणी को बोहित बड हवै है, भारी गुरु जग में विदतै है, भारी गुरु जगत दे विच प्रगट होणगे, बाणी दे बोहित होणगे। ऐसे दीन दयाल सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज राग बिलावल दे अंदर अपार बख्शिश कर रहे ने। बिलावल इस दा अर्थ है राग बिलावल, उस तरह बिलावल दा अर्थ अखरी अर्थ हुंदा है खिड़िया होया, हरिया भरिया, पूर्ण विगास, पूर्ण खिड़ाओ दी अवस्था। गुरुदेव राग बिलावल दे अंदर बख्शिश कर रहे ने। महला पंजवा, इस दा अर्थ है गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे पंजवें शरीर। गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द है महल, उसका अर्थ है शरीर। शरीर पंजवें भाव जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिए दे सिद्धांत दे अनुसार गुरु पंचम पातशाह जी महाराज

ज्यादातर ये जो शंत रूप है पावन बाणी दे अंदर दो अवस्था का ज्यादा जिक्र है। शंत उस तरह उस गीत नूं आख्या जांदा जिहड़ा खुशी वेले गाया जांदा, खुशी वेले गाया जांदा है। पावन बाणी नूं पढ़न वाले जाणदे ने इस शंत दा मुख विशा जां तां प्रभु परमात्मा नूं मिलन दी तड़प है जां प्रभु प्यारे दे मिलाप दा आनंद है। दो विषया दे अंदर ज्यादा पावन शंता दे अंदर पावन बाणी दर्ज है, जां मिलाप दी तड़प जां मिलाप दी अवस्था दे आनंद दा जिक्र है। अज सतगुरु जी ने जो पावन बख्शिश कीती है शंत रूप दे अंदर ए प्रभु दे मिलाप दे ओ आनंद दी अवस्था है जिसनू एक जीव स्त्री सत संगी सहेली दे नाल सांझिया कर रही। सतगुरु जी ने पावन बाणी दी रंभता तो पहला गुरुदेव ने वस्तु निर्देश मंगल दी बख्शिश कीती। गुरुदेव दी पावन बाणी पढ़दे हां असी मंगल दे चार भेद सरवण करदे हां पढ़दे हां। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी साहिब भंग गुर प्रसाद, ए रूप मंगल दा पावन बाणी दे विच 33 वार आउंदा है। जो बचन आप जी ने सरवण कीता एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर ए मंगल 524 वार आउंदा। तीजा रूप है एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, ए बचन 9 वारी आउंदा है। एक रूप है एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद, ए 2 वारी आउंदा। चार भेद मंगला दे सतगुरु सच्चे पातशाह जी पावन बाणी दी रंभता तो पहला उस अकाल पुरख दी महिमा गान करदिया मंगल दी बख्शिश करदे ने। याद रखियो ए मूल मंत्र दा हिस्सा है क्योंकि सिख रहत मर्यादा दे अनुसार एक ओंकार तो लै करके गुर प्रसाद मूल मंत्र दा स्वरूप है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मूल मंत्र दे अंदर सिखी दा बुनियादी सिद्धांत रख दिता। याद रखियो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा केंद्री भाव मुख विशा जे पढ़ना होवे ते सिखा गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे इस मूल मंत्र नू दृढ़ कर ला। एक वारी कलगीधर दशमेश पिता मौज दे विच सन, शिकार खेडन लई जा रहे सन, ता गुरसिखा नाल बचन कीता। कहन लगे गुरसिखो तुहाडे विचों कोई गुरबाणी दा ऐसा ज्ञाता है जो असी घोड़े दी रकाब विच पैर रखदिआं असवारी करिए ते इस असवारी करन दे इन्ने समय दे अंदर कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी दी समुची व्याख्या करके दस देवे कोई ऐसा सिख है। सारे चुप हो गए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दा विशाल स्वरूप विशाल गुरबाणी दा संग्रह ते इन्ने घट समय दे विच व्याख्या। सतगुरु जी वेख रहे ने एक सिख उठिया उन्हें आख्या पातशाह किरपा ते तुसी करनी है, गरीब तो करवा लिओ आप किरपा करो। सतगुरु जी ने रकाब विच अपना मुबारक चरण टिकाया, पलाकी मार के घोड़े दे उपर सवार होन लगे। इन्ने चरणों गुरसिख ने आख्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुरु जी कहिंदे शाबाश सिखा तो गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे गुरबाणी दे फलसफे नूं समझ लिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ए वरसपू निर्देश मंगल दी बख्शिश करके पावन बचन

उस जीव दे मन दे अंदर प्रभु दे चरणां दी प्रीत जागी। प्रीत लगी जी वड्डे भागां वालिआं नूं ए प्रीत ए प्रेम मिलदा है। मन प्रीत लग गए वड्डे भाग है, वड्डे भागां दे नाल प्रभु दे चरणां नाल प्रीत जुड़दी है। जदों मन विच ए इच्छा जागे ना, गुरु दे दर्शन कदों होणगे, कदों अमृत वेला होवेगा बाणी पढ़ांगा, कदों ओ समा आएगा गुरु की सेवा करांगा, कदों ओ समा आवे जदों गुरु की सेवा करन दा मौका मिले। आओ वडभागियां दे मना विच जागदा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज कश्मीर दी धरती ते गए। याद रखियो, गुरु नानक साहिब जी महाराज जी तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज कश्मीर दी धरती ते गए। इत्थे गुरु की सिक्खी दा प्रचार प्रसार करन वाले भाई सेवादास, भाई माधो ते भाई कटूशा, ये बड़ा प्रचार प्रसार करन वाले सन। भाई सेवादास जी माता सी माता भाग परे। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे चरणां दी प्रीत है, मन दे अंदर तांग है, खिच पैदा हुई है। वडभागियां दे मन दे अंदर ये खिच ते गुरु नूं मिलन दी तांग जागदी है। भाई माता भाग परी ने अपने हत्थां दे नाल चरखा कत्या, तंद पाया, ऊणियां कत कत के ते सोहना सतगुरु जी दे लई कुड़ता अपने हत्थी तैयार कीता। ओ सोहना कुड़ता तैयार करके गुरु के चरणां दे विच नित अरदास करन वाली मां नित अरदास करे। सतगुरु जी दा पावन बाणी विच इक वचन है भगत कबीर जी दा, पंथ निहारै कामणी लोचन भरी ले उसासा। जिन्हां वडभागियां दे हिरदे दे अंदर प्रभु नूं मिलन दी तड़प पैदा हुंदी है ना, ओ एदा अपने प्यारे दा राह ताकदियां रहिंदियां ने। जिस तरह कोई एक इस्त्री अपने परदेस गए हुए पति नूं कई सालां दे बाद मिलन वाली, सारा सारा दिन अपने पति दा राह ताकदे रहिंदे, औंसियां पाउंदी है, कां अड़ाउंदे है। ओ वडभागण जीव इस्त्री जिस दे अंदर प्रभु प्यारे नूं मिलन दी तांग पैदा हो गई, ओ भी इस प्रेम दे विच रत्ती हुई अपने प्यारे दा राह डेकदी। पंथ निहारे कामणी लोचन भरी ले उसासा। उरना भीजै मन नूं चैन नहीं आउंदा, उरना भीजै पग ना खिसै हर दर्शन की आसा। उडहो ना कागा कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। कहे कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जाए, एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजै। नित तांग कर दे। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज गए, जाके टिके भाई सेवादास दे घर। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करदिया माता ने अखां दे विच्चों इन्ना नीर उतारिया, उस नीर नाल सतगुरु जी दे पंकज चरण धो दिते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने माता नूं गल वकड़ी विच लिया, कहन लगे मां लिया ओ कुड़ता जिहदियां प्रेम दियां खबरां साडे चरणां तक पहुंचदियां पईआं सन। माता भाग भरी ने अपने हत्थीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं पवित्र कुड़ता भेट कीता, ते ओ भेटा देण तों बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे हत्थां दे विच ही अकाल चलाणा कर गए। याद रखियो, जिन्हां दे अंदर प्रभु दे चरणां दा प्रेम है, प्रभु दे चरणां दी प्रीत है, वह वड्डे भागां वाले। मन प्रीत लग गए वड्डे भाग है, कब मिलिए पूर्ण पते, ये आस रहे उड़ीक रहे कि कदों मैं पूर्ण नूं भाव परमेश्वर

हे सत संगी जनों, मैं आत्मक अडोलता दे विच टिक के उस गोविंद जी नूं प्राप्त कर लवां। हे मेरी सखी, मिली हुई कंत नूं प्रभु दे रंग विच रत्ती होई, मैनू ए मत दे, मैनू ए मत दे, मैनू ए सियाणप दे, मैनू ए मार्ग दस कि मैं प्रभु दे चरणा दे विच अभेद किंज होवां, किंज प्रभु प्यारे गोविंद दे चरणा दी प्रीत हासिल करां। हे सखी, मैनू ए मत देओ। जदों गुरु का सिख संगत दे विच उड़दा, गुरु नानक साहिब जी महाराज जी ने संगत दा सिद्धांत तां ही दिता है। याद रखियो, एक दीवा जगदा होवे तां ओ दीवा रोशनी तां जरूर करदा है, पर ओदे अपने थले नेरा रहिंदा। पर जदों लागे बलदा होया दूजा दीवा रख देईदा, दोवें रोशनी भी करदे ते उहनां दे थले भी नेरा नहीं हुंदा। जदों रब दे प्यारे मिलदे ने, ओह एक दूजे दे कोलों गुरु की वार्ता, गुरु की वडियाई पुछदे, गुरु की साखी दा जिक्र करदे, गुरु की बाणी दी विचार करदे, तां उहनां दे अंदर जो कमी है, जो काई कोर है, ओह निकल जांदे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहन लगे, हे सखी, हे सत संगी मित्र, मैनू ओ मत दे जिस नाल मैं आत्मक अडोलता विच टिक

हे भैणे, मैं दिने ते रात प्रभु दे दरबार प्रभु दे सोने घर दे अगे खलोती सेवा कर दी रहा। दिन रहन दिने रात ठाडी, ठाडी दा अर्थ है खड़ी होई खलोती होई। दो शब्द ने, एक ठांडी है एक ठाडी है, एदे उत्ते बिंदी नहीं लगदे। ठाडी दा अर्थ है खलोती होई। मैं नित खड़ी होई प्रभु दे चरणा दी सेवा करां, दिन रहन ठाडी करां सेवा। प्रभ कवन जुगती पाया, हे भैणे मैनू दस के प्रभु परमेश्वर किस जुगती दे नाल, किस ढंग दे नाल, किस मार्ग राही

अनुसार सतगुरु जी ने इस सवाल का नाल ही उत्तर दे दिता। पहले शंत दे विच बिनवंत नानक करहो कृपा, लहो मोहे लड़ लाया हे सत संगी जान। जे तू प्रभु प्यारे नू गुरु नू मिलना चाहना है ना, ता गुरु अगे ए अरदास कर के हे प्रभु तू कृपा कर मेनू टुटे हुए नू अपने लड़ना लाला अपने चरणा नाल जोड़ ला, उहदे अगे अरदास कर। अरदास ही इको एक ढंग है जिहड़ा टुटिया होया नू प्रभु चरणा दे नाल मेल देंदा, दूर होया नू मेल देंदा है, अरदास ही है। सतगुरु जी बचन कर देना किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम, चार कुंट दै दिश भ्रमे थक आए प्रभ की साम। प्रभु दी शरण ते प्रभु अगे कीती हुई अरदास, टुटिया होया नू विछड़िया होया नू मेल देंदे। सतगुरु जी कहिंदे अरदास कर भैणे।

खोजी जना ने उन्हां सत संगी वडभागियां ने नित खोजिया है और खोज खोज के इस रतन की प्राप्ति कर ली। सतगुरु जी कहिंदे बंदिया तू नित खोजिया कर, दिने ते रात खोजिया कर। सतगुरु जी का यह वचन है जो साडा रोजाना का नितनेम सतगुरु जी ने मर्यादा के अंदर सानू बख्शिश किया है। इहदा अर्थ भी यह सिखा तू नित दे नेम नाल जुड़िया रहे। जे जुड़िया रहेगा तो एक दिन जिहड़ी गवाची हुई वस्तु है तैनू जरूर मिल जाएगी। कबीर केसो केसो कूकी है ना सोईए आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने। पुकार बंदे खोज दिल हर दिन हर रोज, दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। तू दिल दे अंदर प्रभु नू खोज, कदे परेशानी दुख का सामना नहीं करना पाएगा। सतगुरु जी कहिंदे खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम, सत संगियां दे विच्चों मिलिया भाई। खोजन वाले सत संगियां ने लभ

सतगुरु जी कहन लगे, हे वडभागी गुरसिख, हाथ जोड़ के प्रभु अगे बेनती कर। जो प्रभु अगे बेनतियां करदे अरदासां करदे ने, उन्हां नूं इस जीवन दे अंदर प्रभु दी वड्याई रूपी लाहा मिलदा है जी। ये सब तो वड्डा लाहा है। याद रखियो, किसे ने धन खटिया, किसे ने सोना खटिया, किसे ने चांदी बनाई, किसे ने जमीन बनाई, पर वडभागी ओ ने जिहड़े प्रभु दे घर दे अंदर नाम दा वणज करके जांदे ने। नाम दा वणज करन वाले लाहा लैके जांदे ने। सतगुरु जी कहिंदे, इह लाहा है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भज प्रभु दा नाम,

हे सत संगी सहेले, प्रभु दे अगे ए अरदास कर, हे प्रभु तू मेरा अगम अदाह परमेश्वर है। सदा उस प्रभु दे अगे अरदास

सतगुरु सच्चे पातशाह फरमाउन लगे साहा साहा दा अर्थ है ओ जो मिथया होया देन है, अटल अटल दा अर्थ है जिन्हें नहीं टला, जेड़ा दिन नहीं टला। साहा अटल गणया पूर्ण संजोगो राम, राम जी दे नाल मिलाप दा जेड़ा दिन है जेड़ा साहा है ओ भाई कदे नहीं टलन वाला। प्रभु प्यारे दा मिलाप उस जीव स्त्री नू निश्चय होएगा जिस दे हिरदे दे अंदर प्रभु दे मिलाप दी तांग है। जेड़ा गुरु की सेवा दे विच मिलया है ना उनु जरूर प्राप्ति होएगी। ए सच है भाई, जो सुनया है याद रखियो गुरु ओहो जिहा, गुरु ऐसा विचोला जेड़ा विछड़िया होया नू मिल देंदा है। उहदे वर्गा विचोला कौन है जगत दे अंदर। तैंडी बंदस मैं कोई ना डिठा, तू नानक मन भाणा कोल कुमाई तिस मित्र विचोले जाए मिल कंत पछाणा। निश्चय ही इस जीव का मिलाप होएगा परमेश्वर नाल जिहड़ा गुरु दे चरणा नाल जुड़िया। जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेलै प्रभु हर दरगह का बसीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाए दा कट्टे हों मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। पूर्ण संजोगो राम, सतगुरु जी कहिंदे उन्हां नूं जरूर मिलेगा, वो अटल साहा है। प्रभु परमेश्वर गुरु कृपा

लगे हे भैने, मेरा जदों मिलाप उस अबड़ासी वरदे नाल होया तां संत जन मानो जानी बन के आए। जदों वर ढुकदा उहदे नाल जानी आंदे ने। कह लगे जानियां दी थां ते संत जन आए ने। जदों संत जन आए, संत जणा दे नाल मिल करके मैं अपने प्रभु परमेश्वर नूं प्राप्त कीता। मिल संत आए, प्रभ ते आए, संत जणा नूं मिले, प्रभु नूं ध्याया, बने अचरज जानियां। इस जंज दे प्रभु अविनाशी वर दे नाल जिहड़े जानी ने, ओ संत जण ने। ये अचरज जानी ने जिहड़े दुनिया विच

0: सतगुरु जी फरमान लगे हे भाई संत जना दी कृपा दे नाल सत संगियां दी बख्शिश दे नाल बिनवंत नानक सब संत मेली संत जना ने विछड़िया नू मेल दिता है प्रभ करन कारण जोगो प्रभु जो सारे जगत दा मूल है उस दे नाल संत जन टुटिया होया नू मेल दंदे जी। भाई वीर सिंह जी ने एक साखी नू कोड कीता है साढ़े बड़े सत्कार जोग सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी वो कोड करदे भाई वीर सिंह जी दे इस बचन नू। लुधियाणे दे सत अठ मील ते एक जिमीदार जट से कहिंदे वो अपने खेत दे अंदर खूह जोया होया सी उन्हें पुराने समयां दी गल खूह वाउंदा पिया सी एक साधु आया उन्हूं बड़ी प्यास लगी से लगी हुई प्यास दा करके उन्हें इस जिमीदार कोलों जल मंगया। इन्हें सोचा भी जल कला की प्याना लागे गां बद्धी हुई से ये गां दे कोल गया उस पानी दे अंदर जल दे अंदर गां दियां धारां चो दित्तियां वो कच्ची लस्सी बन गई। जदों उस साधु नूं शिकाई वो बड़ा खुश होया बड़ा आनंदित होया कहन लगे भाई एक गल दस भी प्यासा तां मैं सी तैनूं दस दित्ता पानी मंगिया तैनूं पता लगा तैनूं ये किदां पता लगा भी मैं भुखा भी हाँ तू दुध भी विच चोल लिया है। कहन लगे जी बस सोचिया मन दा फुरना बन गया। कहन लगे तू भुखिया नूं अज शिकाया प्यासिया नूं शिकाया है लिया तैनूं भी एक भोजन देने आ। कह लगे जी की कह लगे वाहेगुरु जपया कर जदों खूह वाउणा हुंदा है जदों खेत बीजदा हुंदा है खेतां विच जांदा उदों वाहेगुरु जपया कर जदों ओ वाहेगुरु जपण लगा पुज गया। इतिहास दसदा है कि पंडित ईश्वर सिंह जी होए ने इन्हां नूं एक वारी महाराजा हीरा सिंह ने आख्या सी कि मैं कुछ भेटा करना चाहना सोने दीआं मोहरां दे रूप दे विच। इन्हां ने उन्हां दी भेटा स्वीकार नहीं सी कीती इन्हां दी विद्वता दा करके सत्कार करना चाहते सन। कहिंदे सन भावें यह राह भर देण मेरे मोहरां नाल मैं नहीं जावांगा पर पंडित ईश्वर सिंह जी नूं जदों पता लगा तो चल करके इस जिमीदार जट दे कोल आए इन्हूं मत्था टेकिया इहदी संगत कीती। याद रखियो जिहड़े संत जन साधु जन ने वो टुटिया होया नूं मिलदे किरत दे विच वी करते दे नाल जोड़ देंदे ने किरत करदिआं नूं करते दे नाल जोड़ देंदे ने। सतगुरु जी बचन करदे कहन लगे बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो करन कारण जगत दे मूल नूं संत जन मिला देंदे ने।
1: पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम
0: ओ हिरदा भाई सोहना घर बन गया ओ धरती हिरदे रूपी सुभागी भागां वाली बन गई। केड़ी धरती जी जिस हिरदे दे अंदर गुरु दी बाणी वसे प्रभु दा नाम वसया जिसनूं सतगुरु जी कहिंदे धरन सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन वुठा सभे काज सुहेलड़े थीए गुर नानक सतगुर तुठा। ओ हिरदा रूपी धरती भाई सोहनी बन गई जिस हिरदे अंदर

भाई मेरा प्रभु प्यारा हुण घरे आया है, प्रभ घर आयाड़ा गुरचरणी लागी रा। जदों तो मैं अपने गुरु दे चरणी लगी हाँ, मेरे गुरु ने कृपा करके मेरा प्रभु जो मेथों विछड़िया होया सी मेरिया ही वासनावां दा करके, मेरी कमजोरी दा करके, गुरु ने मेरिया कमजोरियां दूर करके मेरे प्रभु नाल मिला दिता। याद रखियो, जीव विछड़िया अपने कर्मां दा करके, प्रभु नहीं इहदे तों विछड़िया। प्रभु ते सदा नाल, सदा अंग संगं अप अंगे अपंगं बेभूते, सदा अंग संग है अपंग बेभूत दी तरह। प्रभु नहीं विछड़िया, ए जीव वासनावां दा करके विछड़िया है। सतगुरु जी कहिंदे ने जे तू अजे भी लभदा फिरदा ना तां अपने अंदर झाती मार, झाती मारेगा फिर घाट लभेगी। अंदर खोजना शुरू करांगे ते फिर ही घाट लभेगी ना, बाहर लभदे फिरदे घाटां अंदर है। बाबा फरीद जी का एक बचन है, कहिंदे टुंडे हुंदी है सुहाग कू तौ तन काई कोर, जिना नाउ सुहागणी इना झाकणा होर। जे नाम सुहागण है ते अजे भी सुहाग लभदी फिरदी आ तां घाट तेरे अंदर है। तौ तन काई कोर, काई कोर दा अर्थ कोई कमजोरी है। कहिंदे जिन्हां नूं वरना प्रभु खसम मिल पवे वो लभदे नहीं फिरदे। सतगुरु पातशाह जी वचन करदे ने, कहन लगे प्रभ घर आयाड़ा गुरचरणी लागी राम। जदों तो गुरु चरणा नाल जुड़ी, प्रभु घर

हे भैणे जदों तो मैं गुरु के चरणा नाल जुड़ी हां आत्मक अडोलता दे विच टिक के जाग गई हां। जदों कोई गुरु के चरणा नाल जुड़दा जाग जांदा है भाई, जाग जांदा है। जागण दा भाव उठना नहीं हुंदा। एक तां ओह रात सोने सवेरे उठदे, उठण दा मतलब होर है ते जागण दा होर है। जागण दा अर्थ है मन करके जागना, उठण दा अर्थ है तन करके उठना। गुरु के चरणा दे विच जुड़ करके जीव इस्त्री आत्मक अडोलता विच टिकदी सदा सुचेत रहिंदी माया दे हल्लियां वल्लों। ते इस जीव इस्त्री दियां सगल इच्छा पुनियां सारियां इच्छावां

हे भैणे हुण उह आनंद दी अवस्था पैदा होई। आनंद उदों ही आउंदा जदों गुरु मिलदा। आनंद साहिब पढ़दे आणा आरंभता कित्थों हुंदे? आनंद भया मेरी माए। आनंद मिलिया है, पर मिलिया कदों है? सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वधाइयां। इह वधाइयां प्रभु दे मिलाप दे विच ही है। सतगुरु पातशाह जी कहन लगे, हे भैणे ओ प्रभु प्यारे दे मिलाप दे अंदर मिलाप दा करके आनंद पैदा होया ते अन दिन दिने रहन ओ सहज अवस्था विच आत्मक रस दी रौं वाले वाजे वजे। उने की कीता? अहम मत मन की त्यागी। हुण मेरी मत कोई नहीं रही, मैं अपनी मत दा अपनी

फरमान लगे है मेरे प्रभु परमेश्वर, आप जी ने कृपालता दयालता कीती है, मेरी बेनती है बिनवंत नानक बिनवंत दर्थुंदा बेनती करने सरण स्वामी प्रभु दी स्वामी दी शरण दे विच मेरी ए बेनती है, संत संग लिव लागी सत संगियां दे नाल मेरा सदा मन जुड़िया रवे, संत जना दे नाल चरणा दे नाल रब दे प्यारियां दे नाल सदा मैं जुड़िया रहा, उन्हां दे नाल जुड़ करके मैं गुरु दे राही प्रभु परमेश्वर दी प्राप्ति कर लवा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे हे भाई, संत जना दा मेल गुरु का मेल विछड़िया होया नू प्रभु दे नाल मिलाप करवा देंदा। ऐसी कृपा सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज अज दे इन्हां दीवानां दे अंदर इन्हां अलाही फुरमाना दे राही श्री मुख वाक जो सतगुरु जी दे बख्शिश होए, सतगुरु पातशाह जी ने आप त्रुट के साडे ते बख्शिश कीते। इहदे नाल ही बेनती आप जाणदे हो कि मीरी पीरी खालसा मार्च जो श्री अकाल तख्त साहिब तों मीरी पीरी दिवस नूं समर्पित प्रारंभ होया सी, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दियां ओ दो तलवारां धारण दी जात दे अंदर मीरी ते पीरी राज ते जोग शस्त्र ते शास्त्र माला ते भाला मीरी ते पीरी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने संत दे नाल नाल सिपाही भी बनाया। आप जी ने अकाल तख्त की सिरजना कीती, ओ सिरजना जिस दी बाबत इतिहास दे बचन ने किसी राज ने हाथ लगायो बुढ़े और गुरदास बनाए, श्री अकाल तख्त साहब ते सज करके गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने एक बचन कीता सी सिखां नूं, सिखो दसवंध लैके आउंदे गुरु का सिद्धांत लियाओ, अज तो बाद चंगे शस्त्र चंगे घोड़े चंगियां जवानियां अपने बच्चियां नूं तुसी भर्ती करवाओ गुरु की फौज दे अंदर, गुरु नानक दा घर ताडे ते त्रुटेगा। कईयां शंका कीती जी कि पीरी दे नाल मीरी किदा, नाम दे नाल तलवार किदा, तां भाई गुरदास जी ने फिर उस वेले शंका दूर कीता। उन्हें आख्या जदों फुलवाड़ी कीमती होवे ना तां उहदे आले दुआले जिहड़ा जिमीदार हुंदा वाड करदा है, गुरु नानक दी सिक्खी बड़ी कीमती अमोल है, पीरी दे दुआले मीरी दी वाड़ करदे पए आ, जिहड़ा जालम है इन्हें जबर करनों नहीं हटना, जावरां नूं शस्त्र दी मार दे नाल ही रोकना पएगा, इस जुलम नूं रोकना पएगा। भाई गुरदास जी ने उत्थे वचन कीता, कहिंदे ज्यों कर खूहों निकले गल बद्दे पाणी, ज्यों मण काले सप सिर हस दे ना जाणी, जान कथूरी मिर्ग तन मर मुके आनी, तेल तिलों ना निकले बिन पीड़े कहानी। कहिंदे ज्यों सिर भन्ने गरी दे नाल यर निशानी, बेमुख लोहा साधिए वगदी वधाणी, जिस तरह गल बनीए ते पानी खूह दे विचों बाहर आउंदा है ते नालियर दा सिर भन्नीए ओह गिरी देंदा है, तेल तिलां चों कढ़ना होवे ते कोलू विच दी पीड़ना पैंदा है, जे कथूरी कस्तूरी हिरन दे विचों कढ़नी नूं मारना मकाउणा पैंदा है, सप दी सिरी दे विचों जे मणि कढ़नी पैंदी उहदी पहिलां फन फेणी पैंदी, हस के थोड़ा दे देंदा ओह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा इह विशा और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा इह आशा प्रगट करदिआं भाई गुरदास जी ने आख्या, जालम नूं सदा ही तलवार दे नाल सबक सिखाया जा सकदा है, बेमुख लोहा साधिए वगदी वधाणी, मूर्ख गंढ पवे मोह मार, मूर्ख नूं जदों बराबर दा ना टके उहने चिर तक हटदा नहीं। ए सी पीरी दा नाल नाल मीरी दा संकल्प। सो खालसा मार्च रात धर्मकोट मोगा विखे टिकिया सी, अज इत्थों रमता हो के वजीदपुर जिला फिरोजपुर विखे पहुंचेगा। सरबत संगत नूं बेनती जिथे जिथे भी ये वहीर खालसा मार्च पहुंचे, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का काफिला जाण दिया आप जी ने बड़ा सत्कार अदब माण दे नाल पेश होना, गुरु घर दियां हाजरियां भरनियां, ये बेनतियां प्रवान करनियां, समुचे प्रबंध का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिंह साहिब जी का और सारियां संगतां दा, शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा। आओ जी इन्हां पावन बचनां दी सांझ पाउंदे आं।
ਫਤਿਹ ਦੀ

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैल।

0: ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਿੰਗ, ਰੂਫਿੰਗ, ਸੌਫਟ ਫੇਸ਼ੀਆ, ਜੇਮਸ ਹਾਰਡੀ, ਈਵ ਸਟ੍ਰੌਫ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 4039-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लों होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लेनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: परमजीत कलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत कलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत कलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North East कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दें श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह वध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना काट काट के पट पट की जाना जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तजकीनी पोतपुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर एकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिन के दोष्ट दुखित हुए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आय है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दोष्ट छाह छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो ता गावह हरी केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबान क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वड़े आईया कह नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ

मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पई सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महा।

पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरतमा दे जिना तो पंथ नू भी छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान